0: आधारित पताकां प्रदर्शितवान्। अत्रावसरे उपराज्यपालः के कैलासनाथनः, पुडुचेरी स्थलस्य गृहमन्त्री ए नमस्सीवयमः, कृषि कृषक कल्याण मंत्री जी एन एस राजशेखरन, बीजेपी अध्यक्षः वीपी रामलिंगम इत्येते तत्र उपस्थिताः आसन्। ध्वजान् धारयन्तः सहस्रशः जनाः अस्यां यात्रायां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गृहमन्त्री गोरीमेडुस्थिते आरक्षक प्रशिक्षण क्रीडांगणे पुडुचेरी आरक्षक सेनायै राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति संप्रदान समारोहे भागम् अभजत। पुडुचेरी आरक्षक सेनां वर्धापयन् अमित शाहः अवदत् यत् राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति सम्मान प्राप्तिः कस्यापि अनुशासित आरक्षक बलस्य जीवने अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति।
1: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
0: सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5000+ न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति, तथापि केन्द्रशासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः, आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वम् एतेषां हस्तेषु अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मंजेरी स्थानात् निगृहीतः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यंत्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणां अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनम् NIA संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपिणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीनवृष्ट्या ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोर जनपदे जलका नदी अपि च भद्रक जनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तरवृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य प्रोक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः सन्देशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिन्दूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति।
2: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: रक्षामन्त्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिन्दूर महारक्तदान यात्रा रक्तदान शिविरस्य उद्घाटन समारोहे एतत् अवोचत्। रक्षामन्त्रिणा पाकिस्ताने स्थितानां आतंकवादीनां विनाशाय भारतीय सुरक्षा बलस्य मुक्तकण्ठं प्रशंसा कृता। सः अकथयत् यत् महाराष्ट्रस्य प्रायः 1000 मल्लाः क्रीडकाश्च अस्मिन् शिबिरे रक्तदानम् अकुर्वन्। सः एतदपि प्रतिपादितवान् यत् एषा